आय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदित्याय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय

राम जय जय राम। एक बार बोलो अयोध्यापति रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे भक्तों, वेलकम वंस अगेन टू प्रवचन इन आवर हिंदू रेडियो एंड टेलीविजन स्टेशन रेडियो टीवी जागृति। अगेन आई विश टू से स्पेशल थैंक यू टू द मेनी मेनी मेनी कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट एंड ऑफ कोर्स टू ऑल द पर्सनल हियर एट टीवी एंड रेडियो जागृति। अगेन माय कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एफर्ट्स इन हेल्पिंग अस टू रीच आउट द वर्ल्ड लोकली regionally, internationally. Again, Satya Sanatan Dharma ki Jai. We sing the Ramayana Sumiran.

हरे महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर बंदव अवध भुआ सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तृण इव परिहरयू।

मिलियो एक मही सुर तहा, बोले पवन बुलाई ओ रामा, बोले पवन बुलाई. अगेन व्हाट हैपेंड, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द नेक्स्ट, एंड दे हैड गॉन टू चित्रकूट, यू नो, एंड ही वेटेड देयर फॉर अ व्हाइल, येट ही डिड नॉट हैव दिस दर्शन, दिस डिजायर, ही डिड नॉट हैव दिस डिजायर. And what happened? Eventually, he met an old Brahman person. We listen. Enjoy.

0: चलियो चित्रकूट ही तो ही काला, शंकर अपनो रूप छिपायो, तुलसी चित्रकूट कहाँ आयो, फटिक शेपल पर बैठे जाए, राम लक्ष्मण लसाल बचराए, जय राम सीताराम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम।
1: एक बार बोलो, अयोध्यापति रामचंद्र की जय।